0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া 6 বজাত হিন্দীত আৰু 6:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই মুকেশ কুমাৰ বল। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाई तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्करे तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य

0: आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sane Takayuchi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. In the India-Japan annual summit joint statement, both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir on 22nd April last year. They also noted the United Nations Security Council monitoring team report of 29 July 2025 mentioning the resistance front TRF. They also condemned in the strongest terms the terror incident in Delhi on 10th of November last year. The two prime ministers reiterated their commitment to advancing cooperation among like-minded countries towards the shared goal of a resilient and prosperous Indo-Pacific. India and Japan have reaffirmed their shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of India-Japan Special Strategic and Global Partnership. The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said the economic security partnership is underpinned by mutual trust, shared values and aligned interests, and is a recognition that the prosperity, security and economic futures of the two sides are deeply intertwined. It added that this declaration is a recognition that the synergy between

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं

में उभरती डिजिटल पहल शामिल हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: गम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है

0: की दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। यह श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची SIT, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और

0: गर्मी से मिली राहत। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, दो दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू कुसुम।

0: मई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसी जी लिखते हैं,
1: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
0: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
0: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से ये जानना चाहते हैं।
1: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा चलिए, श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
0: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है।
1: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
0: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
1: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
0: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहां से आया।
1: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
0: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
1: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
0: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है, लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
0: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की, लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
1: फिर धीरे धीरे शोध होते गए, और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
0: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में

0: विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
1: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
2: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
3: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
4: हाँ, 2000 साल पहले।
5: नानी माँ?
6: हाँ निधि।
5: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
6: अरे यहीं हूँ। आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
5: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं? क्या कर रही हो?
6: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
5: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
6: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
5: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
6: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
5: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
6: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
5: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
6: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
5: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
6: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
5: मामा जी, मामा जी।
7: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही है तुम्हारी छुट्टियाँ?
5: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
7: ये तो बहुत अच्छी बात है
5: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था। मामा जी, भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
7: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
5: ये किसी खुदरी से शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
7: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
5: अच्छा, भोज वृक्ष?
7: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
5: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है?
7: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
5: अच्छा।
7: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
5: ये किस भाषा में है?
7: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने, ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
5: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
7: हाँ हाँ, बताता हूँ, अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों

0: शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा,
0: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा,
0: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा,
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
1: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
1: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
2: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर लीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
4: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
3: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे, जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
4: जी।
3: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
4: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
3: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं, कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
5: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कालंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी

कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ दिन यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं, इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। सहे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूं, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूं, और जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह,
0: हाँ तो आसिफ खान अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত অনুষ্ঠান উমং শুনিলে। খন্তেক পাছতে 11 বজাৰ পৰা আঞ্চলিক বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
3: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী, দিনৰ 11 বজাৰ আঞ্চলিক বাতৰিৰ সৈতে মই অৰূপ কুমাৰ শৰ্মা। ৰাজ্যত শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ চকুত লগা ধৰণে হ্ৰাস পাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰি কয় যে 2024 চনত এই হাৰ 2018 চনৰ 41ৰ পৰা 29লৈ কমিছে। তেওঁ কয় যে বিগত বছৰকেইটাত স্বাস্থ্যখণ্ডত গ্ৰহণ কৰা সুপৰিকল্পিত নীতি নিৰন্তৰ

नमस्कार श्रोताओं, आप सबका परागमाला लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, सावन के महीने की शुरुआत हो गई है। हिंदू कैलेंडर का पांचवा महीना सावन भगवान शिव को समर्पित है। आज से अमरनाथ यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है। पेश है पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से।

आज ही अपने स्वास्थ्य के लिए उठाए सही कदम। क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी RRIH में गुणवत्तापूर्ण होम्योपैथिक परामर्श, रोगी केंद्रित देखभाल तथा कुछ विशेष स्वास्थ्य स्थितियों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा

0: बराबर सेवाएं उपलब्ध है। चयनित मरीज प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क दवाई एवं प्रयोगशाला जांच सेवाएं। आइए और एक विश्वसनीय सरकारी संस्थान में किफायती और सहयोगात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का अनुभव करें।
1: RRIH भेटापाड़ा गुवाहाटी।
0: यह संदेश जनहित में जारी।
2: सावन का पूरा महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी। सुनते हैं अगला गीत फिल्म शिव भक्त बाबा बालकनाथ से। आवाज है मन्ना डे, कृष्णा काले और साथियों के।

सावन का मौसम सभी को भाता है। झुलसा देने वाली गर्मी और उमस के बाद सावन की ठंडी बौछार सबको भली लगती है। कभी रिमझिम हल्की फुहार तो कभी घनघोर घटाओं का खूब बरसना सारी प्रकृति धूल कर निखरी से लगती है। प्रस्तुत है अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म मिलन से।

0: समग्र स्वास्थ्य सेवाएं अब आपकी पहुंच में है। क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान RRIH गुवाहाटी में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा व्यक्तियों और परिवारों के लिए व्यक्तिगत होम्योपैथिक परामर्श एवं समग्र देखभाल प्रदान की जाती है। कुछ चयनित रोग स्थितियों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। पात्र मरीजों को निःशुल्क दवाइयां एवं प्रयोगशाला जांच सेवाओं का भी लाभ मिल सकता है। किफायती और सरकारी सहयोग प्राप्त स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके लिए उपलब्ध है।
1: RRIH भेटापाड़ा गुवाहाटी।
0: यह संदेश जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, सावन के मौसम की शुरुआत होने वाली है। पहली बारिश के बाद मिट्टी से आने वाली सौंधी सौंधी खुशबू इस मौसम को खास पहचान है। इस महीने में प्रकृति की गोद में झूले झूलने और पारंपरिक गीत गाने की भारतीय परंपरा है। रक्षाबंधन और हरियाली तीज जैसे प्रमुख त्यौहार इस सावन के महीने में ही मनाया जाता है। पेश है अगला गीत कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, फिल्म 1942 लव स्टोरी से।

सावन के मौसम में ही कांवड़ यात्रा होती है। लाखों श्रद्धालु पैदल चलकर गंगाजल लाते हैं और शिवालयों में जल अभिषेक करते हैं। बारिश में वायुमंडल का प्रदूषण भी कम होता है और शुद्ध हवा सांस लेने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का अंतिम गीत हरिहरन की आवाज में, फिल्म शिव महिमा से।

0: বিবিধ ভারতী গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত ভাগ লবলৈ আপুনি আমালৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব পাৰে। আমাৰ নম্বৰ হৈছে 6003166944। পুৱা প্ৰচাৰিত ফোন ইন অনুৰোধৰ গীতৰ অনুষ্ঠান সুৰধ্বনি আৰু সন্ধিয়া প্ৰচাৰিত সান্ধ্য আলাপ অনুষ্ঠানটিলৈ আলোচিত বিষয় সম্পৰ্কত আপোনাৰ মতামত আদি প্ৰেৰণ কৰিবলৈ আপুনি আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটি আজিয়েই টুকি থওক। আমাৰ নম্বৰ হৈছে 6003166944। আপোনাৰ সৈতে আমাৰ যোগাযোগৰ এক নতুন মাধ্যম হৈছে হোৱাটছএপ মেছেজ। আমাৰ নম্বৰ 6003166944।
1: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু খন্তেক পাছতে 12 বজাৰ পৰা হিন্দীত আৰু 12:05ৰ পৰা আঞ্চলিক বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में भारत और फ्रांस के बीच व्यापार दोगुना हो गया है। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडिया स्टैक जैसी डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायचे ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है।

और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारागार में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने स्पष्ट किया है कि विजिंगम बंदरगाह में हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। श्री सतीशन ने यह भी बताया कि एक विदेशी कंपनी द्वारा 49% हिस्सेदारी के निवेश की घोषणा राज्य सरकार को सूचित किए बिना की गई थी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स 511 अंक बढ़कर 78,013 पर, जबकि निफ्टी लगभग 160 अंक की वृद्धि के साथ 24,336 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ৰেডিঅ' বুলনি অনুষ্ঠানটি শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। খন্তেক পাছতেই 1 বজাৰ পৰা হিন্দী আৰু 1:05ৰ পৰা ইংৰাজী বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्याय के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमेरिकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेस ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। काराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन

0: और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam in Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report mentioning the resistance front. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities including Al-Qaeda, ISIS, Daesh, Lashkar-e-Tayyaba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. Prime Minister Sanae Takaichi has since departed from India. Prime Minister Narendra Modi will visit Rajasthan and Gujarat tomorrow. During his visit, he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth around 1.06 lakh crore rupees in Balotra, Rajasthan. These projects span multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. The Prime Minister will inaugurate the new terminal building at Jodhpur Airport. He will also launch the modified Uran scheme in Jodhpur. He will dedicate India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex to the nation at Pachpadra in Balotra, marking a landmark achievement in the country's energy and petrochemical sector. Mr. Modi will also lay the foundation stone for phase 2 of the Jaipur Metro Rail project. The Prime Minister will also hand over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Later in the evening, the Prime Minister will visit Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the India-France strategic partnership is well placed to drive the next phase of sustainable, resilient and innovation-led growth. Addressing the India-France Business Roundtable in Paris, she said the global economy is undergoing rapid transformation due to technological advances, supply chain diversification, energy transition and geopolitical developments. The Finance Minister invited French businesses and investors to partner with India in its journey towards Viksit Bharat 2047. Lok Sabha Speaker Om Birla has said for the creation of a developed India by 2040.

0: nil in the round of 32 at Los Angeles Stadium in Inglewood, California, to book a place in the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi describes Amarnath Yatra as eternal chapter in spiritual tradition and cultural unity of the country, extends greetings to devotees. Finance Minister Nirmala Sitharaman invites French investors to partner with India's journey towards Vikasit Bharat 2047 and calls for strengthening India-France strategic partnership. Two-day orientation program for newly elected members of Legislative Assembly begins in West Bengal. India steps up humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. Nearly 2,600 people died, thousands still missing. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and parts of Madhya Pradesh till tomorrow. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
2: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
3: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
4: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
2: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं।

0: रिपोर्ट।
1: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कारकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
2: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस

0: कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
1: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
2: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश

0: आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: মিডিয়াম ৱেভৰ 411.5 মিটাৰ, 729 কিলোহাৰ্টজ আৰু FM বেণ্ডৰ 101.6 মেগাহাৰ্টজত এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া শুনক পাশ্চাত্য সংগীতৰ অনুষ্ঠান।

आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु रादाब फरायदों सानसुमाखुंगुर बर'आ हादरसानि बावैसोनि दैबानानि थासारिया मोजाङाव फैबाय नाथाय दासिमबो मोननै जिल्लानि 25,000 बांसिन नखरा दैबानाजों लोमसाव जानानै दं आसाम हादरसा अलखदसुंथा बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला धेमाजि आरो डिब्रुगड़ जिल्लानि खमैबो गं 25,100 नखरा दैबानाजों लोमसाव जानानै खहा जानांदों आरो 393.44 हेक्टर आबादथिलिया खहा जादों ओरैहाय बे बोसोरनि गिबि दैबानायाव गुबुन गुबुन जिल्लायाव माथावरि लामा दालां आरो बायदिसिना खहा जानायनि रादाब मोननाय जादों सा सानजा सिमना रेलवेया मैया बांसिन बिबांनि अखा हानाय आरो दैजों रेल लामा खैफोद जाथावना मोनथामजि जायगाखौ खैफोद गोनां होनना सिनायनाय जादों सिनायजानाय बेफोर जायगायाव सरासनस्रा सुबुंखौ सांग्रांथि खालामनानै होनायबो जादों होननानै रादाबाव मिथिहोदों काजिरङा हायुङारि हाग्राबारि आरो मोसा

संरैखाथि ओनसोलनि जिब जुनारफोरखौ दैबानानिफ्राय रैखा मोनहोनो आरो हायुङारि राजालामाजों बारलांनायाव रैखाथि होनायखौ रोखा खालामनो आसाम पुलिसनि गाहाय सामलायगिरि अखिलेश कुमार सिं आरो नगाव जिल्ला आयुक्त देवाशिष शर्माया मैया हाग्राबारियाव खैफोद गोनां जायगाफोरखौ नायदिंहैयो। दैबानानि समाव हाग्राबारिनि जिब जुनारनि थाग्रा थावनि आरो थांनाय फैनायनि लामाफोरखौ रैखाथि गोनां खालामनायजों लोगोसे हायुङारि राजालामायाव मटर गारिनि खारनायखौ दबथायनो जायगानि सुबुं आरो लामाजों थांनाय सुबुंनि रैखाथि होनायनि फारसे मावख'गिरि सानैबो गोनांथि होयो। गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया हादरसानि सोरबिथिं जौगानाय थांखिजों मैया गोदान दिल्लीयाव साब्रै मिरुनि मन्त्रीजों आलादा आलादायै सावरायलायो। गिबि मन्त्रीया लोगो हमनाय मन्त्रीफोरजों ना फिनाय, गाइखेर दिहुन्थाय आरो बिरगोरा दिङा फोनांजाब खोन्दोनि जौगानायनि थाखाय गोलाव बोसोरनि बिथांखिखौ मावफुंनो आरो बावैसो दैबानायाव खहा जानाय न'खरफोरनो अनसुंथाय हरनो थाखाय गुवारै सावरायनाय जायो। सावरायनायाव आसामनि दै सम्पदखौ थि रोखोमै बाहायनानै हादरनि गेजेराव साबसिन ना दिहुन्थाय आरो गुबुन हादराव दैथायहरनाय मिरु खालामनाय आयदाया गिबि जायगा मोननो हायो। ओरैहाय आसामखौ सा सानजानि गोनांथार बिरगोरा दिङा गाथोन आरो फालांगि मिरु महरै जौगाहोनायनि थांखिजों सिलचर, मानस, अमरांसु, माजुलि, दिफु आरो सराइदेउनि थि खालामनाय मोनद' ग्रीनफिल्ड बिरगोरा दिङा गाथोन आरो हाफलंआव गायसननो गोनां हेलिपेडनि खामानिनि जौगानायनि सायावबो सावरायनाय जायो। लोगोसे सावरायनायाव रुपसि बिरगोरा दिङा गाथोन जौगानाय आरो एयारबासनि जोहै आसामाव बिरगोरा दिङा हान्था मेला मिरु खालामनो मावबिथांखि लानायनि सायावबो गोनांथि होनाय जादों। गिबि मन्त्रीया बे सावरायनायनि उनाव फोरमायदि जौगालु फोनांजाब राहाया हादरसानि लाइमोनफोरनि थाखाय गोदान सुबिधा आरो जौगानायनि लामाया थाबैनो उदां जागोन। हादरसारखौ सोमखोर खालामनो थाखाय फैगौ 10 आगस्टनिफ्राय 10,00,000 फरायसाफोरखौ बिफां फुलि गायनायजों लोब्बा खालामनो थाखाय हादरसा सरकारा थांखि लादों। सरकारा बिफां फुलि गायनाय मावबिथांखिनि सिङाव हादरसे 1 कौटि बिफां फुलि गायनो थांखि लादों। हाग्रा बिफाननि मन्त्री जयन्त मल्ल बर'या मैया बे बाथ्राखौ फोरमायो। मन्त्री बिथाङा मिथिहोनाय बायदिब्ला बे बिफां फुलिफोरखौ नोजोराव लाखिनो थाखाय सासे जब कार्ड मावदांसानो जर'खायै बिबान होनाय जागोन। फलबारि मुंनि मावबिथांखिनि सोमोन्दै फोसावनायनि मन्त्री बिथाङा बुङोदि हादरसानि जायगानि फिथाइ सामथायफोरखौ संरैखाथि होनायनि थांखिजों हाग्रामा बिफाना बे मावबिथांखिखौ आखाइयाव लादों। ओरैहाय ड्रननि हेफाजाबाव बिफांनि बेगर सारनानै दैमानि बालाबारिफोरावबो बिफांजों सोमखोर खालामनो हादरसा सरकारा थांखि लादों। हाग्रामा बिफाननि दैदेननो हादरसाया बयनिबो जोनोम सानाव फांसे बिफां फुलि गायनानै आबहावाखौ सोमखोर खालामनायाव मदद होगोन होननानैबो मुश्री बरुवाया फोरमायो। सिमना जौगांखां मन्त्री अतुल बर'या मैया आसाम नागालेण्ड सिमना ओनसोल नायदिंहैयो। मन्त्री बिथाङा उरियामघाटनि रेंमा संरैखाथि गोनां हाग्राबारि, नाम्बर संरैखाथि हाग्राबारि आरो दैयां संरैखाथि हाग्राबारि सिमना ओनसोल नायदिंहैयो। सिमना ओनसोलनि रेंमा हाग्राबारिनि सीआरपीएफनि सावनियाव नुजाथिहैनानै गागि मावख'गिरिफोरजों सावरायलायो। बिथाङा सिमना ओनसोलनि जौगालु खामानि, रैखाथिनि राहा आरो थासारिनि सायाव सावरायो। सिमनानि जायगानि सुबुंफोरजों मन्त्री बिथाङा थासारिनि सायाव सावरायो। मन्त्री बिथांजों लोगोसे काजिरङा समष्टिनि एमपि कामाख्या प्रसाद तासा, हरौपाथार समष्टिनि एमएलए बिश्वजित फुकनाबो सिमना ओनसोल नायदिंहैफादोंमोन। स्पेना मुलुग काप फुटबल बादायनायाव प्री क्वार्टार फाइनाल मोननो हाबाय। दोलोआ थांनाय हराव केलिफर्नियाआव खुंनाय नक आउट क्लबनि मोनसे गेलेनायाव अस्ट्रियाखौ 3-0 गलाव फेजानानै प्री क्वार्टार मोननो हाबाय। ओरैहाय स्पेना प्री क्वार्टार फाइनालाव पर्तुगालजों मोगा मोगि जागोन। गुबुन फारसेथिं पर्तुगाला मोनसे नक आउट क्लबनि गेलेनायाव क्रोएसियाखौ 2-1 गलाव फेजानानै क्वार्टार फाइनाल मोननो हायो। ओरैहाय बेल्जियम, आमेरिका जथाय हादर फ्रान्स, नरवे, कानाडा, मरक्को, ब्राजिल, पराग्वे आरो इंलेण्डआ प्री क्वार्टार फाइनाल मोननो हाबाय। बेजों लोगोसे जों रादाबाय एसेनोसै।

0: खुलुमबाय बे आकाशवाणी गुवाहाटी नोंथांमोना आयदाखौ खोनानो मोनदों महाबाहु दालायनिफ्राय गिबियावनो दुलाराय खोनासंग्रिफोरनिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै दिनैनि बराफोरखौ बेखेवनाय जाबाय आफादखौ फोसावनाय जादों आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दालायनि मिडियाम वेबनि 401.5 मिटाराव आरो एफएमबिनि 101.6 मेगाहार्सआव बे फसंनायखौ नोंथांमोना आकाशवाणी क'क्राझारनि 102 मेगाहार्स आरो आकाशवाणी धुबुरीनि 103.3 मेगाहार्सआव रिले खालामनानै फसंनायखौ खोनानुगासिनो दं लगेसे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप आरो एआईआर रेडियो मोबाइल एपनि जोहैबो नोंथांमोना बे फसंनायखौ खोनानुगासिनो दं दिनै स्टुडिअ दं आं सन्जीव बर'आ आरो आंजों लोगोसे स्टुडिअ दंफायो सानसुमा खुंगुर बर'आ दान्दिसे उनाव नोंथांमोना जोंनि उननि हाबाफारिखौ खोनानो मोनगोन गोबांथार लोमजानाय गान्थि गान्थि सानाय खर' सानाय गन्थं खुगा एबा हाथाय मोदोमनिफ्राय थै गनाय बायदिया डेंगु बेरामनि लैखोन डेंगु बेरामखौ दैथिंग्रा थाम्फैया बिदै दैनो हायैबादि दै दोननाय बासनखौ खोबनानै दोननांगौ लोगोसे नाङै बासन टायार नालेंखरनि खावसा आरियाव दै जमा जानो होनो नाङा डेंगुनि दैथिंग्रा थाम्फैया सानाव सौरो बेनिखायनो सानाव उन्दुनायावबो मुसारि सोंनांगौ लोगोसे गासै मोदोमखौ खोबनानै सि गाननांगौ बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दालाय दायो फसंलादों थुनलेरि आयदा आगोलावनो फोसावजाखांनाय सेल्फ मेड रानी बर'नि गावनो सुजुनानै आवरायनाय माखासे खन्थाइफोर फैदेरब्ला खोनासंदिनि
1: जिउआ गंसे खारबाय थानाय ट्रेन हिउ हिउ फैनानै दोम लाखिफैबाय लामडिं इन्टारसिटी एक्सप्रेस सोरबा सोरबाया आखाइनि फावजों बाय बाय होलायदों गावनि लाय लथर गासैखौबो जोथोनै आबार खालामनानै फारा फारि गाखोदों गावनि दाब्बायाव जेन' बयबो गावनि थिखानाय थांखियाव सहैनो हांखुर जिउआ गंसे खारबाय थानाय ट्रेन गंसे हाथायसालि बादि गंसे फावथिना सालिबादि गोबां रोखोमनि फावथिना बेवहाय सोलिदों गंसे रेलनि गंफ्रोम दाब्बानि दावबायारियानो जेन' साफा साफा फाव दिन्थिगिरि सोरबा लेंग्रा खाना आरो बेंगुरा सोरबाया बिबायारि सोरबा मेथाइ खनगिरि सोरबा अनफावरि सोरबा गंग्रा आरो सोरबाया सिबिनायनि मुङाव नंखाय फान्दायगिरि बयबो जिउ दैदेननायनि मुङाव खालामदों मोनफा मोनफा फाव खारदों आरो खारदों लामडिं इन्टारसिटी एक्सप्रेस गोब्राब खरथिनि रेलनि खारथायजों जायगा सिनायस्लाबै मुलुगाव फैस्लाब मोनै रेलनि ट्रेकआव गोदोना जलांदों बबेबा जुनारनि रेलनि ट्रेकखौनो जिउ फोजोबस्रांनायनि मांखर खालामबाय जिउखौ जखा सुनायनो रोङै बेन्दोंजों फानब्रेजानाय जिउनि अबथिरा लाइमोन नेनो रोङा ट्रेननि खरथि नेनो रोङा जिउनि खरथि मोनफानि उनाव मोनफा स्टेशन फैदों ओंखारनांगौआ ओंखारदों गाखोनांगौआ गाखोदों जेन' बिमानि गोरबोनिफ्राय गोरलै उजिदों एबा सम जानाय लोगो लोगो बैसो बाबेननाय आबौआ जमराजानि आलासि जाहैदों जिउनि सोरखिया थाद'नाय गैयाजासे जेरै गिदिंबाय थायो सान हर थाद'नाय गैयाजासे सोलिबाय थायो गंसे रेलनि फावथिना बेखायनो बुंदों औ बेखायनो बुंदों जिउआ गंसे खारबाय थानाय ट्रेन नंगौ थारैनो जिउआ गंसे खारबाय थानाय ट्रेन गसाय नेदोंमोन आं निजोम थावनि दान्दिसेनि थाखाय साहारानि बारजों रानस्रावनाय गारामा सिल सिल जोंख्लाबनाय खाफालनि गाहायनि थायनै जाखर मेगन लरेट गैयै जरानै आथिं आरो आखाइखौ लानानै गसाय नेदोंमोन आं GMCSनि मिनि ICUनि खथायाव सलादें जानानै गसाय सिबिनो बावलांनाय गावारिल' सानस्रिनि देरसिन जिब मुङावल' बियो सोद्रोमथि आखुनि आंबोथ' बेनिनो मोनसे बिदिन्थि हान्थु खेरायनोबो आथिं रुबायबाय आखाइ खबजबना सिरियै मेगन मोसेबनोबो

सोरनि देरहासारनायनि दल दामख्रावनाया बारा जाबाय। उस, आं मेंग्लिबाय, आं निराशा जाबाय। वेटिं फर गडटनि इस्ट्रागन आरो ब्लाडिमिर बादि गसाय फैयैनि रादाबखौ मोन्नानै राहाथ' गैया, नेनांगौ नेदों, बबा खुगाजों आखाय फोलावदों, नुनानैबो नायख्लें जादों, मोदै जिरिदों। गिथाव गोजाम बिल्डिंनि खोमसिनि सावगारि खोमायाव रिमफैदों, बिखाया मावग्लुंदों, रावबो खोनायाजासे मोन्थोर आवरायदों आं। खनले खनले बिबार माला खुदों जमराजानि आखायनि, दल दामै दामै आंखौ बरायदों लुसिफारनि दैदेननाय हान्जा। हरखाब सेलाइननि मुलिया जोबनानै दावखोदों गोजाथै, थेवबो गैया गसाइनि सायखं। आं नेदों आरो नेदोंल' सलादें देहाजों मिज्लौ मिज्लौ नायहरनानै फांथेनानै दोननाय खायमा गाबनि दरफारसे गसाय फैयैनि रादाबखौ मोन्नानैबो गसाय नेदोंमोन आं। बे थावनियावनो सलादें जानानै साननैसो थांना थाबावनायनि हाबिलाजों बिमानि आद्रा सिमां जाफुं होनायनि मिजिंजों मर्डार्न नों सोर होननानै आंनाव दासों। संदाननोबो दा नाजाखा नों सोमोन्दोनि हाफाव, बे जोहोरा अन्थाय मुगानि नङा, खोमा सुयोब्ला खोनागोनल' नों हेब्रे माब्रे मर्डारनाय सोदोबफोर। आरो नों बेफोरनि ओंथि नागिरनानै जावलिया दाजाखा। सानफा मोनफा महर सोलायग्रा सोहोरनि गासैबो बिबायारियानो निखावरि नंजोबाथ'। बिसोरो खाबुनि फलान खालामग्रा मानसिनि मुङाव सोद्रोमथिखौ फानथिंग्रा माफा माफा जिब। नों बाब्राब बाब्राब थैलां, आं नोंखौ सिनाया। सिरिल' था नों इनायखौ नुब्लाबो, अहिंसानि खान्थिजों लोंहोनो नागिरोब्ला नों गंगानि दै रोजा रोजा हाथियार दैग्रानि जोनोम जागोन, आरो खनले खनले जिनाहारि खालामजागोन बिमा गंगानि मोन्थोर। सिनायथिखौ फानथिंनानै गोजोननि मोन्थोर आवरायनो नों दानाजा। सिनायथिखौ फानथिंनानै गोजोननि मोन्थोर आवरायनो नों दानाजा। आगानफ्रोमबो गाग्लिजागोन नोंनि रोंगौथि आरो दै गांहाबना थानाय रायखस मोन्दांथिफ्रा गोसोम गाबनि फिरफिला लायै लायै गोजोन आरो खौसेथिनि मोन्थोर आवरायगोन। बेखायनो नों सोर होननानै आंनाव दासों। संदाननोबो दा नाजाखा नों सोमोन्दोनि हाफाव, बे सोहोरा अन्थाय मुगानि नङा, खोमा सुयोब्ला खोनागोनल' नों हेब्रे माब्रे मर्डारनाय सोदोबफोर। आरो नों बेफोरनि ओंथि नागिरनानै जावलिया दाजाखा। बिहारी आमोखाया गदाय लाबोबावबायनो, मालाय आमोखियासे बिहारी मोनबाय। बे फंसेल' बाथ्रा आराव जादों गामि गामि बयनिबो खुगा खुगा। गोसोनि गोजोननायजों सोरबाया मिनिखुमादों, सोरबाया दुखु मोनफादों बिमा अनसुलिनि दाहायाव। खोरखि खना खना दर खना खना आं गाबखोमादों अन्थाव बाथाव फिसाफोरनिफ्राय एरायखोमा एरायखोमा। आहार जाफुहांनाय उन्दै गथ'नि मिनिस्लुनो नागिरनाय मोखाङाव आं अखाफोरनि बायदि गाब गाहोनो हायाखिसै। थाबायस्लिंनो सोलोंजेननाय फिसाजोनि सोंथि, आयै आफाया माथो मादै गोदान लाबोदोंनो? गामिनि आयंमोना बिहारै लाबोबाय नोमफाया, बिहारै लाबोबाय होनसोगारदों। आं थाल्ला रोङाखै फिसाजोनि खुद्रिनाय फिसाज्लानि गाबख्रावनाय। ध्यानाव जिरायनाय बुद्ध देबनि सोलेर बादि गुसु जालांदों उरि अरफबदों आंनि सोलेर। लाभाबादि ओंखारबोनो नागिरनाय मोदैफोरखौ आं आंनि बिखायावनो बरफ बायदि लाथाखा होदों। अन्थाव बाथाव खुदियाफोरखौ लानानै थांनो मालाय आं दा बबावथो थांनो? आइ आफा दंजागौमोनथाय गाबगु खुगु अजद दैखांहैगौमोन, बाजै अनसुलि थागौमोनथाय बिमानि दाहा रानलायनो हागौमोन। आंनि मेगनावनो आंनि सिथ्लायाव दावखा दन्दा गाबफैदों, फिसाय थासेयावबो रैखाथि गैया जानांदों आंनि उन्दुनाय खथा। आंनि मेगन सिगाङावनो आं फोथायनो हायाखै, आंनि मेगन सिगाङावनो आंनि फिसाया सिन्दुर फुन्दों गावनि अनजालिनो, नायगार नायगार बुथारदों आंनि फोथायथि। नाथाय आं दा बिसोरनो माबोरै फोरमायनो बिहारिनि ओंथिया जे सासेनि मोन्थायखौ सानै बिसिजों राननानै लानांगौ जायो। फिसायनि बिखानि मोजोमसे अननायखौ गोसो गैया गारा खावनै खालामनांगौ जायो। आं दा आंनि अन्थाव बाथाव गथ'फोरनो माबोरै खोन्थानो बिहारिनि ओंथिया जे खास्रि बिस्रि बिखा आलौ होयो, राहा गोथे खालामो बिमानि मोन्दांथि आरो गावनि मोन्थायफोरखौ बुथार बुथार थालिम

0: खालामनांगौ जायो मोनसे आलादा नुथायनि जेराव गाबनाय आरो दाहाखौ दोनखोमाना फिसाफोर आरो समाजनि सिगाङाव नंखाय मिनिफ्लानायनि फाव खालामनांगौ जायो फोथायथि फोथायथियानो नोरजिया खालामो फोथायथियानो फोजोबस्राङो गुस्थिनि गाब आरो हांगार जालाङो थै रोदा रोदा गोसारनाय मोनसे दौलें खालिबोल' मुंसुजायो आइजोनि मुसुखा नों आं मुलुगाव खनले खनले गोरोन्थि खालामो खालिबोल' सोंथि सिखाङो आइजोनि आखलाव सानफा मोनफा महर सोलायनाय नों गोख्रों महरगिरि फोथायथियाव बोलि होजानाय आं सिनायै बिबायारि दंनायमोनब्ला गोरबोआव नोंनि इसेब्लाबो सैथोथि गुस्थियाव गाब गाहैयै गाहैयै थांनानै जमरा जानो फोरमायहैगौमोन आं जोंनि सल' नोंथ' बेनिबो खाबुखौनो होआखिसै आंनो आंगोथि गैयै सिनायै बे सहराव नों आंनो सोर्गोआव गाखोलांनायनि जांख्ला गथायनानै गावनो बुहुमखौ मानोथो गोबाफिनखो नों खनसेल' जासिमोन बिसनि अमृत आं मिनि मिनि गथायगौमोन फोथायथिजों खनले खनले जिनाहारि खालामजानाय आंनि बिखा आरो नों गंगानि दैजों दुगैयै दुगैयै बिमा सीतानि बादि फोरमायनो हागौमोन नोंनि गोथारथिनि आरो रावणनि उदखारनि सल' नों अरायबो फोरमाय नोंनि नंखाय सैथोथिनि सल' आरो गासै मुलुगा दिदोम जिरायनानै खालामजाथों सिखार नोंनि फलान फानजारियाव बेखायनोथ' खनले खनले सोंथि सिखाङो सैथोथिनि सायाव थेवबोदि मानो जै जायो अरायबो नंखायनि फोथायथियानो नोरजिया खालामो फोथायथियानो फोजोबस्राङो गुस्थिनि गाब आरो हांगार जालाङो थै रोदा रोदा गोसारनाय मोनसे दौलें खालिबोल' मुं सुजायो आइजोनि मुसुखा नों आं मुलुगाव खनले खनले गोरोन्थि खालामो खालिबोल' सोंथि सिखाङो मानो आइजोनि आखलाव बेनो मुलुग बेनो संसार बेनो फोथायनाय बेनोथ' गासैबो
1: एसे सम नोंथांमोना थुनलायारि आयदायाव आगोलावनो फोसावजाखांनाय सेल्फ मेड रानि बर'नि गावनो सुजुनानै आवरायनाय माखासे खन्थाइफोरखौ खोनासंनोबाय थुनलायारि आयदायावनो खोनासंनो लानाय जादों टीना नार्जारिनि लिरनानै फरायथिनाय थाम खना जलंगा सुंद' सल' फरायथिनायखौ फैदो बिदिब्ला खोनासंदिनि
2: थाम खना जलंगा जेथो दाननि सानसेखालि सानफाथोलो अखारे रे हागासिनो दंमोन सिथ्लानि हाफोरा गाब्लानो हाब्रु बेर बेर जादों सेन्देल गाननानै थाबायब्लाथाय गोजा हाया जुथा बायदिसो सिथाबलायो ओंखायनो दमखलनिफ्राय दैखौ सानावनो इसिङाव रोगाखानानै मुनुआ जेसेबां हायो हरनि ओंखामखौ थाबनो संनानै जाहोनो हाब्लानो गथारसै सान्दों नाथाय जाखांगौ थोरसि लथा सुगौमानि हर जाखाबायमोन जेब्ला इसिंनि खामानि फोजोबनानै उन्दुनाय खथायाव हाबहैयो अब्ला मुनुआ खोनाबाय अनारुनि फना रिं जागासिनो दं खेबसे नङा खेबनै नङा बा द' खेबसो गाबखांबाय ओलैस्रो देहाजों बे खथा बै खथा नायथिं बायब्ला नुबाय अनारुआ खाथिनि खथायावसो दरजा मोखाङाव गसंनानै अखा गोलैनायखौ नायै नायै थांखु नागासिनो दं मेंनायफोराव जिग' जिग' गाबनायखौ खोनासंनो बानानै बुंहरो मुनुआ सोरनि फन मानोथो हमाखसै बिसिनि राव खोनानानै खेबसे रिसिभ खालामनायसै अनारुआ हेल' मानोबामोन गुबुन फारसेनिफ्राय खमफिनाय गारांजों थेब्लानि राव जोंनाव दसे फैथ'लै आदै अनारुआ सोङो मानोब्रा एथ' अखा हानायफ्राव हरफोराव बोरै थांनो एथ' अखा हानायाव हरफ्राव बोरै थांनो नांगौब्ला गाबोन थांसिगोन आं थेब्लाया एंब्रा एंब्रा बुंफिनो दसेल' फैथ'दोब्रा आदै दानो अनारुआ सोङो माथो जादोंब्रा खोन्थाया मानो थेब्लाया फिनो आंनि दरजाखौ नारखु नारखा खेवनो नाजादोंलै मानसिफ्रा अनारुआ सोंफिनो सोर मानसि थेब्लाया फिनो आरो सोर जानोब्रा फेंथा लद्रा थेख्ल'

आरो थिंगिनी मोनानो थ आंखौ सिथारनो नायगिरगासिनोलै थेब्लानि बाथ्राखौ खोनानानै अनारुआ बुङो थोद मा बुङोब्रा नोंलाय असदा माथो सानफ्रोमबो नोंजोंनो लोगो लोगो नुगासिनो थेब्लाया फिन गाब्रुब्रु रावजों बुङो गोसो गेसावफोरखौ गिलायलांबायलै आं ए र' र' र' रथ बिदिब्ला आं स्रोद नायहैनि गिनाङा रावल' होनांला सिरि सिरि थाथ'दे बाथ्राखौ सिरियास साननानै बिदि बुंहरनानै अनारुआ थांजागोन ना थांजाया दरजा खेवनानै बाहेराव स्राय खेबसे नायहरो मोब्लिब साप्लाय गैथ'आ सोरगिदिं खोमसि दैहुनि दै लुफावनाय बायदि अखा हानायजों गेजेर गेजेर ख्लाब ख्लिब मोफ्लामनायजों जाबजों खोमसि हरा आरोबाव गिख्रंथाव जासिन्दों बे समाव थिंसायाव गोग्लैनाय अखानि झाव झाव सोदोबनि अनगा जेबो खोनाथारा दसे सानहाबनानै मुनुखौ लोगो लाहरनायसै बियो गावजों थांफानो खोमथाथा देहायाव गामसाखौ गोरा गानखाना लिंथि थेबनानै खामसालिनि जि फोरानग्रा थारनिफ्राय रेनकोटखौ बोख्लायना गाननानै फारसे आखायाव टर्च गुबुन फारसेयाव लावथि थसे लानानै थांगोनखि थाङा जानानै आवगायदों थेब्लानि न'थिं मुनुआबो उन उन साथा गंसे लानानै सिथ्लानि इथा बनाय सा थाबायलांदों बिसोरखौ नुनानै खामसालि खनायाव कुसन बनाय मरा गंसेयाव आराम उन्दुना थानाय टमियाबो लान्जाय जांख्रि जांख्रि सिथ्लायाव ओंखारबोयो बे समावनो हरखाब फथर सोदोब खालामनानै सोरबा बाइक सालायना थेब्लामोननि न' सेरनिफ्राय गामिनि लामाजों जायखारलाङो सोदोब खोनानानै टमियाबो अनारुमोननि खाथिनिफ्राय भौ भौ भौ सोंनानै होसोलांनायसै बाइकनि सोदोब आरो टमिनि सोंनायजों बिसोर समखिखाङो आरो मानसि फैनाय खोथाखौ नंमारगौ साननानै लोगो लोगो गोख्रै आवगायलांनानै गावस्रानि बाउन्डारि जेनलाखौ बारलांनानैनो मोननाय गिदिर लिसु बिफां सिङाव गसंहैनानै अनारुआ थेब्लाखौ गाबज्रिहरो बाबु बाबु ओइ बाबु जों फैदों ओंखारबो थेब्लायाबो अनारुनि रावखौ खोनानानै लासै लासै खेर क्रे क्रे क्रे क्रे होनजासे सोदोब जाजासे दरजाखौ खेव आरो हाग्रा झुरिग्रा गोलाव सिखा खंखायखौ लानानै सांग्राङै गंस्रो गंनानै ओजों नायलाय हौजों नायलाय नायनानै ओंखारबोयो जाथायखौ नुहुरनानै मुनुआ अनारुखौ इसाराजों आवगायनो बादा होनानै खोनाफा माफा लासै लासै बुङो सोरखौ मोनगोन सोरखौ मोना थ' दांहरजागोनबो मुनुनि इसारायाव अनारुआबो थेब्लाखौ खेबसे नायहरो आरो थाबनो सांग्राङै गावनि न'थिं फावसाय फावसाय बिखौ बुंहरफिननायसै रावबो गैलालै बाबु बाहेराव खारबाय खोमा सिरिनो न' सिङाव दरजा फांथेना थाहैफिनदो थां नंगौना आदै होननानै थेब्लायाबो जेरै ओंखारदों बिदिनो हाबना थाफिननायसै अनारुआ न'आव फैफिनबाय नाथाय गोसोआ उसुखुथु जाथारदों खाथियाव थांनानै खेबसे नायनो मोनब्लामोन सानथारदों थानो हायैयाव गावसोर सानैजोंबो थांनोबो गिनानै गामिनि सम्बारुखौ फनजों लेंहरबो अनारुआ लेंहरो अनारुआ सम्बारुआबो अनारुनि खोथा नागारनो हायैयाव गोसो गैयाब्लाबो न'सुंसेनि फेरलांगोराखौ लोगो लानानै फैनायसै बिदिनो बयबो ज' जानानै थेब्लानि न'सिम थांनायसै बिसोरखौ नुनानै थेब्लाया बोलो फोरानानै खुगाखौ गोलाव गुसुं खालामलायनानै थोंगोर गसंना थानो हायै लोहो लोहो मावहोलां बुंहोलां खोन्थायो नैलै आदै नैबे आंनि खथानि दरजाखौनो नारफैग्रोदोंमोन बिनि उनाव बै भेन्टिलेसनजों हाबनो नाजादोंमोन उनथाराव उखुम सामानि गाखोबावदोंसोमोनब्रा बिदि बुंनानै दसे सिरि थाहाबनानै दरजा खनायाव गसङो बियो आरो मेगनजों इसारा होयै होयै बुंबावो हनैलै हनै नायहरलाय दाबोनो जेनला आन्दोआव इंखोमानानै आंखौ नायहरगासिनो दं बिसोर थेब्लानि बाथ्राफोरखौ खोनानानै अनारु शंकरमोना बिनि न'खौ मोजाङै सोरगिदिं गिदिं गिदिं

0: नायब्ला नुबाय भेन्टिलेसनाथ' सिमेन्टनिसो बानायनाय सोरां हाबनोल'सो फिसा फिसा गब्लं मोननैसो दं उखुमावबो गाखोलांनो जेबो राहायानो गैया बाथ्राफोरखौ खाबजाया मोननानै फिन बिनि खथानि खना खनला मोजाङै नायदिंनायाव एम सिङाव नुहुरबाय खालि बोलो जौनि गुफुर थाम खना पलिथिन जलंगानि दामोल अब्लासो बाथ्रानि गुमुरखौ मिथिनानै बिसोर गोमोयो आरो गावजों गाव मोखांजों मोखां नायलायलाय थिखिनियाव दावखोदोंब्लाबो खुनुरुखुम रागाखौ हमथाना अनारुआ बुंबाय थेब्लाखौ हर थौबायलै सिरि उन्दुना थादो जानला मानला गोब्रामला बायनांला रावबो फैखालाबि जोंबो थांदोनि अनारुनि उन उन शंकर फेरलां मनु बयबो ज' थेब्लामोननि न'निफ्राय फैफिननायसै लामायाव शंकरा अनारुनो खोन्थायो आदालै बथलसेयाव 20 रांब्ला 10 रोजानि बेसेबां मोनगोन सानना नायलाय दाखालि बैसागोनि रायजोनि बाख्रिनि मेल खालि थेब्लाया 10 रोजा रां हावलाद लादोंमोन बिनि उन खालिनिफ्रायनो दहाय बेलासियावबो आं खालि बुलो जमुना बाजैनि न'आवल' बाज्रेद बाथेद थांलाय फैलाय नुबाय थादोंलै खर' मेलेमनि तारफोरासो जबाय नामाथाय जिरन गैया जासे ओंखाम जाया दै लोङा फुंनिफ्रायनो जौजों मोखां सुब्ला देहायालाय बेसेबांथो सहायनो अनारुआ थेब्लानि दिनैनि हालोदनि जाहोनखौ हरफा मानि सानब्रे बायनानै थंब्लेट उन्दुलांनो हायाखिसै खालि बुलो रोमै रोमै गोसोखांदों अन्थाव बाथाव थेब्लाखौ बिमा बिफाया उन्दैनिफ्रायनो सासेल' हौवा फिसा होननानै बोरै दाव दाव अननानै खामानि मावहुआ दांहोआ आलो आलो फेदेरदों आखायाव फैसा दं होननानै बिफायाबो बिनाय लोगो लोगो मुवाफोरखौ खाथियाव होफैदों सेंग्रा देरनानै फरायसालियाव थाङालासिनो दाबिगार दाबिगार बिफानि फैसा बिख्ल' बिख्ल' लोगो लेवाजों बाइक दाब्रायना थाबायग्लांना थाब्लाबो बिरि सिगारेट सोबनाय नुब्लाबो गोरा राव फंसेबो बुंफेरामोन दायो हालावबो थाङा मैयावबो उदायला हा हु फानजोब्बाय बिसिबो खारजाबाय मनुआबो हरफाथोलो नाजासेयावबो उन्दुलांनो हायाखिसै ओंखायनो फुङावनो सिखारनानै सियाय सियाय खामसालिनि टाइल्स हुगारदों आरो टमिखौ रायदों नै नोंखौ मानसिया जेराव थाङो बियावनो थांफायो फिलिं फिलिं फिलिं फिलिं नुवाखै टाइल्सआव नोंनि आगानजों बेसेबां हा नांदों मालाया रंजायो आंहासो जिरन गैया निन्दोबो गैया
1: एजेसम नोंथांमोना थुनलेरि आयदायाव आगोलावनो फोसाव जाखांनाय टिना नार्जारिनि थाम खना जलंगा सुंद' सल' फरायथिनायखौ खोनासंबाय बेजों लोगोसे थुनलेरि आयदायाबो एसेनोसै नोंथांमोना बे फोसावनायखौ आकाशवाणी गुवाहाटी मुवाबा हुदालाइनि मिडिया वेभनि 401.5 मिटार आरो 101.6 मेगाहार्सआव आरोबाव आकाशवाणी क'क्राझारनि 102 मेगाहार्स आरो आकाशवाणी धुबुरी सेन्टारनि 103.3 मेगाहार्सआवबो रिले खालामनानै फोसावनायखौ खोनानगासिनो दं बे आकाशवाणी गुवाहाटी मुवाबा हुदालाइ दायो फोसावलादों मेथाइनि आयदा आयदानि गिबियावनो खोनासंनो लानाय जादों अरुण नार्जारिनि गाराङाव नैबे गोदान मेथाइखौ बे मेथाइखौ बिथाङा गावनो सुजुदों फैदोबदिब्ला खोनासंदिनि

0: সেয়া আছিল আজমল হুছেইন আৰু তেওঁৰ সংগীসকলৰ কণ্ঠৰ জিকিৰ। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি।
1: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: ডক্টৰ হাজৰিকাৰ কেইবাটাও গীত হিন্দী ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছে জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী দেশৰ প্ৰসিদ্ধ কবি গীতিকাৰ গুলজাৰ ডাঙৰীয়াই। তেনে এটি গীত এইবাৰ আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়াইছো।
1: ये शायर जिसका नाम भूपेन हजारिका है, कितनी आसानी से अवाम के दिलों की आहट सुन लेता है। ये रात जो लोगों के दर्द की रात है, अवाम के गम की रात है, जब उसके सीने में गूंजती है तो वो तलाश करने लगता है ये आवाज कहां से आ रही है, इनकलाब किस रास्ते से आ रहा है और दर्द किस रास्ते से आगे बढ़ रहा है। वो कान लगाए सुन रहा है और वक्त से पूछ रहा है ये किसकी सदा है।